0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे, धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो, कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित। ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा

0: पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है, पर क्यों? आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
2: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
1: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
2: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो पीला हूं।
2: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे गुब्बारे,
2: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो लाल हूं।
2: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
1: बेचारा जोजो।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
7: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
0: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
3: उनकी माँ का नाम रेनेल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही सभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
4: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
3: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
4: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
3: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन

0: रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। बधाई हो।
1: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत बधाई हो। इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
3: बहुत बहुत बधाई हो।
4: '1897 में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
5: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
6: आइए मारिया जी।
7: कैसे हो गैब्रियल, कैसा चल रहा है यहाँ? आप कुछ उदास लग रहे हो।
6: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
7: और बुरी?
6: जी।
7: अब भला वो कैसे?
6: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
7: हाँ हाँ जरूर।
6: जी
5: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
8: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
7: हाँ। नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह असामान्य नहीं है।
5: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
9: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
4: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
5: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।

0: मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षा विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
1: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
2: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
1: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
2: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था, कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था, कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
1: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
0: धन्यवाद
4: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
0: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
3: जी,
0: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
3: जी जी, धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में

0: सफलता मिलने पर मॉन्टेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
1: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी, जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
0: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
1: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
0: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
1: मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
0: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
2: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षरों की।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Monday, we'll be taking calls on market-related queries. But do remember, we do not address stock or company-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today, Manoj Pathak and myself, Sarabjit Kaur.
1: Namaskar, Market Mantra ki Tazank mein swagat hai. हर सोमवार की तरह आज हम आपके प्रश्नों को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करने वाले हैं. ये जानकारी आपको हुआ ही करती है. हम बस आपको अपना नंबर बताते हैं, 2331-4444, 2331-0481, या फिर 2371-7106. दिल्ली से बाहर से यदि आप फोन करते हैं या मोबाइल फोन से करते हैं तो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी आपको डायल करना होगा. हम इस कार्यक्रम में किसी खास कंपनी या शेयर से संबंधित प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा. अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं.

0: के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, पूरे आकाशवाणी परिवार को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: आइए शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से।
2: Country's retail inflation rises to 4.8% in August this year. Wholesale inflation stands at 9.92%. In Asian markets, South Korea's KOSPI declines over 3%. And global crude oil prices surge, Brent crude trading over $108 per barrel.
0: देश में इस वर्ष अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 4.82% पर पहुंची। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 9.92% दर्ज हुई। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3% से अधिक लुढ़का और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े। ब्रेंट क्रूड का मूल्य $108 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचा।

0: बढ़कर 7.05% पर पहुंच गया, जबकि इसके पिछले महीने यह 6.65% था। अगस्त में आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में वार्षिक आधार पर 9.81% की वृद्धि हुई है। ये थे आंकड़े थोक मूल्य मुद्रास्फीति से संबंधित। और आप दिल्ली से अमित जी। अमित जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
1: सर नमस्कार, मैं दिल्ली से अमित जा बात कर रहा हूँ। सर
0: जी स्वागत है आपका।
1: सिन्हा सर से, नमस्कार सर। हेलो।
2: नमस्कार नमस्कार।
1: हाँ, सर मेरा प्रश्न ये है कि हाल ही दिनों में कल ब्रिक्स सम्मेलन हमारे यहाँ समाप्त हुई सर, तो ब्रिक्स करेंसी पे चर्चा हुई है, तो क्या ब्रिक्स करेंसी चलन में आ जाएगी, और चलन में अगर आएगी तो कब तक आएगी, इसमें क्या मुश्किल आ सकती है। दूसरी चीज सर कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होती है सर, वो भी अपने प्रोजेक्शन देती है जीडीपी के बारे में, इंडिया के बारे में, विश्व बैंक भी देती है, हमारे आरबीआई भी मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान देती है, तो इस बार जो जीडीपी का आंकड़ा आया है सर, तो वो सबको मतलब सरप्राइज कर दिया एक तरह से, तो क्या उनके कैलकुलेशन में कहीं कमी रह गई थी क्या सर? धन्यवाद।
2: देखिए पहला जो प्रश्न है ब्रिक्स करेंसी का, ये स्पष्ट कर दूं कि इस बैठक में इस पर कोई प्रस्ताव नहीं था, कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि ये काफ़ी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बैठक में जिस तरीके से हमारा यूरोपियन यूनियन का एक करेंसी यूरो है वो ब्रिक्स करेंसी लाएंगे, उसकी जगह पर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की ज़रूर बात हुई है, यानी कि दो देशों के बीच भुगतान की व्यवस्था और सरल और सहज हो सके, उसके लिए बात ज़रूर हुई है, ब्रिक्स करेंसी पर चर्चा नहीं हुई है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो हमारे आर्थिक विकास के आंकड़े हैं जो कि जीडीपी के नंबर से करते हैं, और आपने कहा कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है या फिर रिजर्व बैंक है, इन सभी के अनुमानों से थोड़ा ज़्यादा आया है पहली तिमाही में, अप्रैल जून की तिमाही में। देखिए आपको केवल हेडलाइन नहीं देखना चाहिए, हेडलाइन के पीछे के आंकड़े भी देखना चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं कि उसके पीछे जो प्रमुख आर्थिक संकेतक जिसको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे जीएसटी का कलेक्शन क्या रहा, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन क्या रहा, आपका ई वे बिल जनरेशन जो जीएसटी में आता उसका क्या रहा, यदि वो सभी आंकड़े आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो जीडीपी के आंकड़े में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसको लेकर के हैरानी नहीं होनी चाहिए। हम हेडलाइन तो देखते हैं, हेडलाइन के पीछे की कहानियों को अगर आप देखेंगे तो शायद इन आंकड़ों की प्रासंगिकता जो है वो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी।
3: इंटरेस्टिंगली आवर नेक्स्ट कॉलर इज आल्सो फ्रॉम दिल्ली। विनय जी सवाल पूछे।
4: मार्केट
0: नमस्ते।
4: हाँ जी सर, सर मेरा क्वेश्चन है कि जो कंपनी को प्रॉफिट होता है टैक्स आफ्टर टैक्स, दूसरी कंपनी जो डिविडेंड देती है, और वो डिविडेंड जब शेयर होल्डर्स को मिलता है तो शेयर होल्डर्स को दोबारा उस डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। पहले कंपनी ऑलरेडी जब टैक्स पे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स दे चुकी होती है, और फिर एज ए शेयर होल्डर फिर देना पड़ता है, फिर डबल टैक्सेशन क्यों होता है, ये पूछना पड़ता है।
2: देखिए आपने जो मुद्दा उठाया है कि कंपनी जो भी लाभ कमाती है निश्चित तौर पर उस पे जो लाभ होता है, दरअसल दो तरीके का लाभ होता है, एक आपका परिचालन लाभ जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, और उसके बाद उसमें जो टैक्स आता है उसको माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाता है, उसको घटा दे तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में से एक हिस्सा आपको लाभांश के तौर पर दिया जाता है, वो आपकी अपनी आय है, वो आपको जब एक शेयर धारक होने के नाते मिलता है आपकी आय में जुड़ जाता है और उसमें आपको कर देना पड़ता है। तो डबल टैक्सेशन आप कह सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें टैक्स पे प्रॉफिट मार्क किया जा चुका है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वो आय आपके पास किस स्वरूप में आई है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है और उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। और ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आपने जो है अगर आप कर के योग्य जिसको कहते हैं आमदनी में नहीं है तो आप उसका फायदा भी ले सकते हैं, लेकिन डिविडेंड पे टैक्स लेना वो एक शेयर धारक की आय है और कंपनी के मुनाफे पर कर लगना वो कंपनी की आय है।
0: दिल्ली से ही हमारे साथ हैं फोन लाइन पर जयकिशन। जयकिशन जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
5: जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ, इसलिए कि कल सम्मेलन खत्म हुआ है।
0: जी जी,
5: अब अभी आपने जो ये करेंसी की बात करी है, मैंने 15 साल पहले से मेहनत की कि भाई हमारे देश में प्लास्टिक करेंसी आनी चाहिए, जो कि अब 10 और 20 का नोट जो है वो अगले साल या कुछ बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा, तो क्या इससे हमारी कुछ स्थिति आर्थिक स्थिति सुधरेगी हमारे यहाँ या नहीं सुधरेगी? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कहना है कि भाई हम लोगों को उस गेम के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए जो हमारी स्थिति को खराब करते हैं, और डुप्लीकेट करेंसी आज भी छप रही है और छपते चले आ रही है। भाई ये मेरे दो क्वेश्चन है।
2: जो आपका पहला प्रश्न है, देखिए

0: मुझे लगता है कि दो अलग-अलग मुद्दे हैं। ब्रिक्स करेंसी जो है वो एक जो अलग-अलग देश हैं हमारे उन सभी के बीच में एक सामान्य समान मुद्रा यानी कि कॉमन करेंसी की बात की जा रही है, जैसा कि हमारा ईयू में यूरोपियन संघ में जो हमारा यूरो है। तो एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि इस बैठक में ब्रिक्स करेंसी पे चर्चा नहीं हुई है फिलहाल, आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। दूसरा, आपने जो मुद्दा उठाया कि प्लास्टिक करेंसी का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी रिजर्व बैंक के तहत आने वाले प्रिंटिंग प्रेस ने जो है वो उन्होंने टेंडर जारी किया है प्लास्टिक शीट के लिए, जिसके आधार पर 10 रुपये और 20 रुपये के नोट जो हैं वो जारी किए जाने हैं प्लास्टिक करेंसी के तौर पे। और इससे आर्थिक स्थिति के जोड़ा जाना कोई सही नहीं होगा, इससे ये होगा कि रिजर्व बैंक की जो लागत होती है हर साल जो नोट छापते हैं जिस पर करीबन 4,500 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ रुपए की लागत आती है, उस लागत में ज़रूर कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि प्लास्टिक के जो नोट होते हैं, प्लास्टिक जो पॉलीमर सीट्स के नोट होते हैं उसकी ज़िंदगी ज़्यादा होती है। जो कागजी नोट होते हैं ये 3 वर्ष तक चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे देश में जो एक कागजी नोट को रखने का जो तौर तरीका है वो काफी अलग है, उससे भी जो नोट की जिंदगी है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो प्लास्टिक करेंसी से रिजर्व बैंक की लागत में कमी आएगी, अर्थव्यवस्था पे, आर्थिक स्थिति पे उसका कोई असर पड़ेगा ये कहना अभी सही नहीं होगा।
1: शिशिर, आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन अगेन टू द न्यूज ऑफ WPI इन्फ्लेशन राइजिंग टू 9.92% इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो व्हाट डज दिस इंक्रीज टेल अस अबाउट द करंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द इंडियन इकोनॉमी?
0: सी, वी हैव टू इन्फ्लेशन रेट, वन इज कॉल्ड रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड होलसेल इन्फ्लेशन विच इज बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। सिंस 2016 वी आर यूजिंग CPI फॉर ऑल द पॉलिसी डिस्कशन। सो दैट इज वाई वेन एवर यू सी डिस्कशन ऑन इन्फ्लेशन यू विल फाइंड मोर फोकस ऑन द रिटेल इन्फ्लेशन एंड नॉट ऑन द होलसेल इन्फ्लेशन। बट होलसेल इन्फ्लेशन ऑल्सो हैज सम सिग्निफिकेंस। वेन वी से 9.9% ऑफ होलसेल इन्फ्लेशन, दैट मीन्स द प्रोड्यूसर्स आर पेइंग मोर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। सो वेन द प्रोड्यूसर्स आर पेइंग मोर फॉर द इनपुट एट द एंड ऑफ डे दे विल ऑल्सो पास इट ऑन टू द कंज्यूमर, दैट द रिटेल कंज्यूमर। कैस्केडिंग इफेक्ट, बट दैट कैस्केडिंग इफेक्ट हैज अ टाइम लैग। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट टूडे यू हैव से 9.9% ऑफ होलसेल इन्फ्लेशन एंड नेक्स्ट मंथ योर रिटेल इन्फ्लेशन विल बी समथिंग अराउंड 8%। इट विल टेक सम टाइम, बट इट इज गिविंग एन इंडिकेशन दैट द प्रोड्यूसर्स आर पेइंग हायर कॉस्ट फॉर द इनपुट एंड द रिटेल कंज्यूमर मे हैव टू पे मोर इन द फ्यूचर।
1: All right, let's hear from our next caller from Bhopal. Shankar ji, सवाल पूछे।
2: नमस्ते शिशिर शर्मा जी, आपको गणपति उत्सव की शुभकामनाएं।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: मकर संक्रांति सबको शुभकामनाएं। मेरा सवाल सर ये ब्रिक्स के ऊपर ही है। ब्रिक्स एज अ ग्रुप बनाया है जिसमें बड़े अजीबो गरीब टाइप के लोग हैं। एक मैन्युफैक्चरर है बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग, दूसरा एक कंज्यूमर है इंडिया, तीसरा साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है और ब्राजील है। इनकी लिवरेज कहाँ है? हाउ डिविल दे विल बी एबल टू लिवरेज? तो इस ब्रिक्स का लिवरेज क्या है? व्हाट इज द लिवरेज दैट ब्रिक्स कैन हैव टू काउंटर द यूनिलैटरल एक्शंस बाय अमेरिका और यू और एनी दीस कंट्रीज सो दैट दिस कैन बी स्टॉप्ड और वॉर कैन।
0: शंकर जी देखिए, आप अगर ब्रिक्स के तमाम देशों के जीडीपी को मिला लीजिए और उनका अगर आप देखिए कि 30% 40% की जीडीपी की बात आती है, उससे ज़्यादा की जीडीपी की बात आती है, वो दुनिया के बाजार में नीति निर्माण में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ब्रिक्स में एक चर्चा हुई है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की। अब आप कहेंगे ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? अब आप यही समझिए कि दुनिया भर में जितने भी अनाज की बात करें, जो कृषि उत्पाद हैं उसका लगभग 44% जो है वो ब्रिक्स देशों में है। अभी क्या होता है कि ये जितने भी हमारी कमोडिटीज हैं उसकी प्राइसेस शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के जरिए, CBT जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जरिए तय होती है। अब यदि हमारे पास एक ऐसा एक्सचेंज हो जहां पर 44% जो खपत हो रहा है उसके लिए कीमत जो कहते हैं कि डिस्कवर करना यानी कि उसका कीमत का पता करना वो संभव हो पाए, ये एक लिवरेज पॉइंट है। अब दूसरी चीज आप ये भी देखें कि एक तरफ आपके पास चाइना है जिनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल काफी हाई है, एक रशिया है जिनके पास कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हाई में है। जब इस तरह के देश एक मंच पे आते हैं तो वो ग्लोबल साउथ के लिए भी यानी कि जो हमारे अल्प विकसित देश हैं, अविकसित देश हैं, उनके लिए भी कुछ बड़ा कदम उठाने की बात करते हैं, जो कि इस बैठक

0: हुई है, ये वो लिवरेज है। तो आप एक तरफ ये भी देखिए कि बाजार की दशा दिशा को वो कैसे प्रभावित कर सकते हैं, दूसरा ये देखिए कि बाजार में कीमत तय करने की व्यवस्था को वो कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और तीसरा कि जो हमारे अल्प विकसित देश हैं, जो कमजोर देश हैं, उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये वो मुद्दे हैं जो ब्रिक्स में लेवरेज, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, उसके जरिए संभव हो सकता है।
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नए ढांचे का प्रस्ताव दिया है जिसके तहत बैंक पूरे खाते के बजाय केवल विवादित लेन देन राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर देंगे जब 1,000 रुपए या इससे अधिक के असामान्य हस्तांतरण को म्यूल खातों या साइबर धोखाधड़ी से संभावित रूप से जोड़ा जाता है। बैंकों को हस्तांतरण की पहचान करने के लिए AI आधारित लेन देन निगरानी प्रणाली का उपयोग करने की आवश्यकता होगी जो ग्राहक की घोषित प्रोफाइल के लिए अकस्मात है, अनुपयुक्त है या ज्ञात साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। मसौदा निर्देश 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी होने वाले हैं, हालांकि बैंक उन्हें पहले भी लागू कर सकते हैं। RBI के अनुसार ये ढांचा 4 अगस्त 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करता है जिसमें इसे मनी म्यूल गतिविधि और साइबर सक्षम धोखाधड़ी से जुड़ी राशियों या खातों पर अस्थायी डेबिट होल्ड के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP निर्धारित करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है। संदिग्ध मनी म्यूल खातों के लिए RBI के प्रस्तावित नियम अधिक लक्षित दृष्टिकोण के साथ पूरे खाते को फ्रीज करने के कठोर दृष्टिकोण को बदल देंगे। 2 अक्टूबर 2026 तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए गए मसौदा संशोधन निर्देश KYC निर्देश 2025 के तहत बैंक खाता संचालन और मनी म्यूल पर मौजूदा निर्देशों में संशोधन करते हैं।
2: मीनवाइल जगदीश जोशी जी जॉइन्स अस फ्रॉम दिल्ली। जगदीश जी अपना सवाल पूछें।
3: हाँ जी मैम को नमस्कार, जगदीश जोशी नांगली दिल्ली से
2: जी,
3: और एक्सपर्ट जो बैठे इनको भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: हाँ सर, दो छोटे से क्वेश्चन है सामान्य से कि एक तो ये कि ये सुनने में मैंने सुना है कि हालांकि इसमें कितनी सत्यता है, ये आपके एक्सपर्ट जो एडवाइस है वो चलेगी कि गोल्ड का जो स्टॉक है वो इंडिया के पास फिलहाल है नहीं। और दूसरा जो प्लास्टिक करेंसी की बात हो रही है तो एक तरफ तो ये भी बात आती है कि प्लास्टिक से एनवायरमेंट जो हमारा पर्यावरण है इसको भी लॉस होता है, तो इससे तो इन दोनों पे आपके एक्सपर्ट राय चाहता हूँ। थैंक यू
0: जगदीश जी। मुझे लगता है जो पहला आपका प्रश्न है, जो आपने एक आशंका जताई है सोने को लेकर के, ये निराधार है। अटकलें जो भी चलती हों, देखिए सोने के मामले में दो चीजों का ध्यान रखिए। पहली बात यह है कि विश्व में सोने की आपूर्ति सीमित है, ऐसा नहीं है कि सोना नए सिरे से बन रहा है, तो जितना हम सोना खपत कर रहे हैं वो आपूर्ति सीमित होती जा रही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे देश में वो सोने की जो खपत है, सोने का जो भंडार है वो कम हुआ है। दूसरा, देश में अगर सोने की भंडार की बात करें तो एक रिजर्व बैंक के पास है और एक जो कि घरों में है। अब घरों में सोने की कितना सोना है ये किसी को नहीं पता है। कभी लोग कहते हैं कोई 22,000 टन है, कोई कहते हैं 20,000 टन है, ये आ जाएगा तो बाजार में सोने की कीमत बिल्कुल गिर जाएगी, लेकिन उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कोई ऐसा बताता नहीं कि मेरे पास कितना सोना है। आपके हमारे घर में जो भी सोना होता है, रिजर्व बैंक के पास जो सोना है वो हर सप्ताह उसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि बीते सप्ताह जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है जो कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है, उसमें सोने का एक बड़ा योगदान है। तो पहली बात, ये सोने की भंडार नहीं है, इस खबर का कोई आधार बनता नहीं है। आपने जहां से भी सुना होगा उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। दूसरा आपका प्रश्न प्लास्टिक करेंसी को लेकर के, देखिए प्लास्टिक करेंसी और कागजी मुद्रा जो है, अब कागजी मुद्रा जो है, आप कागज जो बनाते हैं वो कागज कहां से आता है, या तो आप पेड़ काटते हैं या जो आपके पास है उसको रिसाइकल करते हैं। तो रिसाइकलिंग से कागज नया बन जाएगा उसमें दिक्कत होगी क्योंकि उसमें सुरक्षा के कई तथ्य जो होते हैं वो शायद ना रह पाए, इसीलिए आपको नए कागज की जरूरत पड़ेगी। तो कागज आपको ज्यादा चाहिए, उसके लिए आपको अलग संसाधन देखने पड़ेंगे। प्लास्टिक करेंसी की जिंदगी ज्यादा होती है, जैसा मैंने पहले कहा था कि कागजी नोट की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष तक होती है, प्लास्टिक के लिए कोई ऐसा नहीं है। और दुनिया के तमाम देशों में प्लास्टिक करेंसी जो है वो चलन में है।
1: दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका। दिनेश जी सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
1: स्वागत।
4: मेरा सवाल भी प्लास्टिक करेंसी पर है
1: जी।
4: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये प्रपोजल है कि प्लास्टिक करेंसी 10 या 20 रुपए में इंट्रोड्यूस होगी, तो इस डिनोमिनेशन में तो ऑलरेडी सिक्के चल रहे हैं, तो ये डुअलिटी क्यों है? बल्कि प्लास्टिक करेंसी क्या उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए थी, जैसे 100 या 500 जिसमें प्लास्टिक

0: जिसमें ऑलरेडी सिक्के नहीं है, क्योंकि सिक्के भी के भी काफी लंबी लाइफ होती है। थैंक यू वेरी मच
1: जी दिनेश जी, आप बिल्कुल, आपकी राय बहुत अच्छी राय है कि हमें जो ऊंची मुद्रा, ऊंची कीमत वाले हैं, 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये वाले, वहां पे प्लास्टिक करेंसी की बात है। ये ध्यान रखिए कि अभी जो 10 रुपये और 20 रुपये के जो प्लास्टिक करेंसी लाए जा रहे हैं वो प्रायोगिक तौर पर लाए जा रहे हैं, वो पायलट स्कीम के तहत है। उसकी उपयोगिता किस तरीके से होगी, उसके चलन में किस तरीके की बात आएगी, उसके लिए वो लाया गया है। हो सकता है आप 2 साल के बाद ऊंची कीमत वाले जो नोट हैं उनमें आप प्लास्टिक करेंसी देखेंगे।
2: Well, in some more news, India and Mercosur have signed the first additional protocol to the India-Mercosur Preferential Trade Agreement, PTA, marking an important step towards facilitating paperless trade and modernizing customs procedures between India and the Mercosur countries. Mercosur is a South American economic and political trade bloc founded in 1991. Its states' parties include Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay and Bolivia. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 5th edition of Semicon India 2026 at Yashobhoomi, New Delhi on Wednesday. It will bring together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 40 countries.
3: और अब खबरें शेयर बाजार से। घरेलू शेयर बाजार तो श्रोताओं बंद है, आपकी कई बधाइयां और हमारी ओर से आपको कई बधाइयां गणेश चतुर्थी के अवसर पर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों जगहों पर इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव और सिक्योरिटीज का लेन देन त्योहार के उपलक्ष्य में आज बंद रहा। सराफा बाजार और मुद्रा बाजार भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर बंद हैं। पिछले कारोबारी सप्ताह में शेयर बाजार अच्छे खासे घाटे के साथ बंद हुआ था और गौरतलब है कि लगातार 5 सप्ताह से बाजार गिरावट के साथ बंद हो रहा है। बाजार में इस लगातार गिरावट का यह दौर क्या दर्शा रहा, हमारे व्यवस्था की आधारभूत कमजोरियां या हमारी मजबूती के बावजूद वैश्विक निवेशकों का पैसा बाहर निकालना, क्या मुख्य कारक हैं लगातार इस बिक वाले?
1: दो कारण आप कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हम फोन ले लें।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहुल गांधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत आपका मेहुल, सवाल पूछिए। मेहुल जी आप हमारे साथ, जी आप जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका।
4: सिसिर जी
1: नमस्कार।
4: हाँ नमस्कार, मैं मेहुल गांधी बोल रहा हूँ। क्रूड का प्राइस इतना बढ़ रहा है तो क्या हम लोग साइकिल नहीं इस्तेमाल कर सकते और क्रूड हम इंपोर्ट करने का बंद नहीं कर सकते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने का ऐसा रूल लागू नहीं कर सकते सरकार?
1: मेहुल जी आपका सुझाव अच्छा है और मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में सोच सकती है, लेकिन उसकी एक व्यावहारिक भी जो परेशानी है वो भी आपको ध्यान में रखना है।
3: और अब लौटते हैं अपनी चर्चा पर।
1: ये जो दो बड़े मुद्दे इस समय में हैं बाजार के लिए, पहला तो जो वैश्विक अनिश्चितता है वो आप ध्यान में रखें और जिसकी वजह से आप शेयर बाजार में आप जो है वो लगातार आपने गिरावट देखी है। एक बड़ा मुद्दा यह है कि फेडरल रिजर्व ने एक संकेत दिए हैं कि वो ब्याज दरें बढ़ाएंगी और जब वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे ये हमारे विदेशी निवेशकों के लिए कहते हैं यहां से पैसा ले जाने का रास्ता खोलेंगे और यही वजह है कि आप बाजार में थोड़ी जो है आप गिरावट देख रहे हैं।
2: मीनवाइल अरिजीत जॉइंस अस फ्रॉम कोलकाता। अरिजीत प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: Good evening, Market Mantra.
2: Good evening.
5: Ma'am, I wanted to ask you this, that a couple of years ago I heard the government of India has bought all the gold which was in London and US back to India. Recently, the Prime Minister has said that not to go to US or anywhere or buy gold whatsoever. I wanted to understand from the expert that the emphasis which has been on gold and which is being in gold, and there is a lot of complication by buying gold ETF, how all these things matter in the market.
1: Okay. Arijit ji, please remember that we import almost 800 tons of gold every year. That means we are spending a lot amount of dollars in that. So when we need more and more, less, when we are working on reducing the pressure on rupee, it is also necessary to reduce the import cost. And that is why we are focusing on reduction in the consumption of gold. That is the key reason for that.
3: आइए श्रोताओं आपको लिए चले वैश्विक शेयर बाजार। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, वहां का प्रमुख शेयर बाजार दक्षिण कोरिया का कोस्ट

0: एसपी आज बिकवाली के दबाव में 3.3% से अधिक घाटे के साथ बंद हुआ। उधर जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.8% की कमी आई। गौरतलब है कि एंथ्रोपिक सीईओ डारियो एमोदेई द्वारा एआई विकास की गति धीमी करने संबंधी आग्रह के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में एआई और सेमीकंडक्टर से संबंधित कंपनियों में बिकवाली देखी जा रही है। एमोदेई के विचारों का समर्थन एआई से जुड़ी अनेक कंपनियों के प्रमुखों ने किया है।
1: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज मोर देन 3% टुडे आफ्टर स्ट्राइक्स ऑन सऊदी अरेबियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अटैक्स ऑन शिप्स इन वेस्ट एशिया कंपाउंडेड सप्लाई कंसर्न्स। Brent crude was trading 3.4% up at $108.22 per barrel in intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, West Texas intermediate crude was trading 3% higher at $103.11 per barrel.
0: श्रोताओं आपने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, आपका हमारी टीम की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और आप श्रोताओं की ओर से शिशिर जी हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
2: धन्यवाद।
1: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Country's retail inflation rises to 4.8% in August this year. Wholesale inflation stands at 9.92%. In Asian markets, South Korea's KOSPI declines over 3%. And global crude oil prices surge, Brent crude trading over $108 per barrel. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: திரைகாணம் கேட்டீர்கள். இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी. डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए. उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है. डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है.
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा. ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी. उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है. साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है. नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है. भारत

0: नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाघ जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने प्रशासन में मराठी को प्रमुख स्थान दिया और भाषा में पारिभाषिक शब्दावली का समृद्ध भंडार तैयार किया, जो हिंदवी स्वराज के दौर में शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बना। हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए श्री शाह ने कहा कि दोनों पर्वों का एक ही दिन पड़ना मणि कांचन योग है। कार्यक्रम में हिंदी शब्द संसाधन, टाइपिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। साथ ही राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए गए तथा वंदे मातरम सहित कई पुस्तकों का विमोचन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 3 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने टोक्यो में यह खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
2: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts with very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
1: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit, held in the national capital under India's chairmanship, concluded on Sunday. BRICS comprises 11 major emerging economies, representing nearly half the world's population and around 40% of global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் இனிய திரைப்பட பாடல்கள் கேட்டு ரசித்தீர்கள். இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी. डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए. उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है. डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है.
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा. ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी. उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है. साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया.
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है. नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है. भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है. विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है. परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है. परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है. परिषद ने बाघ जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की. सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की. इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही करीब 15

0: இதுவரை நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சியில் இனிய திரைப்பட பாடல்கள் கேட்டு ரசித்தீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தியறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी. डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल. उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है. श्री जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है.
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा. ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी. उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है. साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया.
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है. नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है. भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है. विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है. परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है. परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है. परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की. सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की. इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे. दिल्ली सरकार एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के दौरान 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजधानी में 1,25,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे से जुड़े काम किए गए. ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार विषय पर 5वें भारतीय तकनीकी और आर्थिक

सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार 50,000 रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों को मुफ्त कार उपलब्ध कराएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा AI से निर्मित और फर्जी है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी. डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए. उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है.
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा. ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी. उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है. साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया.
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है. नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है. भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है. विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है. परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है. परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है. परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की. सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की. इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे. इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे. सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है. ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार विषय पर 5वें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया. इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया. इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. देश में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति में अगस्त में मामूली वृद्धि हुई है. वार्षिक आधार पर ये जुलाई में 9.78% से बढ़कर अगस्त में 9.92% रही. थोक मूल्य मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने 9% से अधिक रही. 5वां जम्मू फिल्म महोत्सव 17 सितंबर को शुरू होगा. उद्घाटन समारोह गुरुवार को सुबह 11 बजे राइटर्स क्लब के अभिनव थिएटर में आयोजित किया जाएगा. इस महोत्सव का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं

0: இன்னும் சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் ஒலிபரப்பாகும். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी. डॉक्टर

0: जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में 600 से अधिक भागीदार, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनी में 6 देशों और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक विशेष स्टार्टअप पवेलियन होगा। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। इसका संयुक्त आयोजन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सेमी मिलकर आयोजित करते हैं। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार विषय पर 5वें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया। 5वां जम्मू फिल्म महोत्सव 17 सितंबर को शुरू होगा। उद्घाटन समारोह गुरुवार को सुबह 11 बजे राइटर्स क्लब के अभिनव थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने टोक्यो में ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் ஒலிபரப்பாகும். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மனோஜ். विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को

0: शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अब 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के सेट विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से परीक्षा की संशोधित तारीख की घोषणा की है। ये परीक्षा पहले 27 सितंबर को निर्धारित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। 3 दिन के सम्मेलन में पैनल चर्चाएँ और महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये आयोजन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को साझेदारी, निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अवसर तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपये या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर धोखाधड़ी से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अपनी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 को प्रौद्योगिकी के उपयोग से उन्नत बनाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उन्नत 1033 हेल्पलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। इन सुधारों से 1033 हेल्पलाइन को कॉल करने वालों की लोकेशन पहचानने, अलग अलग भारतीय भाषाओं में कॉल समझने और सही मदद को ज़्यादा तेज़ी से लोकेशन पर भेजना सुगम होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार इक्काल में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it's important to recognize that this BRICS Summit was taking place in a very polarized world.
2: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
1: Condemning terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has also won praise from several member countries following